मन तन जिन लिया हृदय का आधार रहा काम क्रोध अहंकार मति व्यत्या संसार पौ संत चरणी लाग चरणी मिटे दूसंधार सत संतोख दया कमावै ही करणी सारू आप छूट सब होए रेणा जिस दी प्रभ अनिरंकार जो दिसै सो सगल तू है पसरिया पासार कहो नानक गुर भरम काटिया सगल ब्रह्म विचार श्री जाग महला पंजवां दो कृत सुकृत मंदई संसार सगलाना दोहू ते रहत भगत है कोई बिरला जाना ठाकुर सर्वे समाना क्या कहो सुनो स्वामी तू बड पुरख सुजाना रहाऊ मान अभमान मंदे सो सेवक नाही तत् समदर्शी संत कोई कोट मंदाही कहन कहावन ए कीरत करला कस न कहन ती मुखता गुरमुख कोई बिरला रहा गात अवगत कश नगर नगर न आया संतन की रेण नानक दान पाया राग श्री राग महला पंजवां कर सतवां एक ओवं तेरा भरोसा प्यारी मैं लाड लड़ाया भूलें चूकै बार तू तू हर पिता माया सुहेला कहन कहाव नू तेरा बिकम भाव नहाऊ हों माण तान करो तेरा हों जानो आपा सब ही मध सब ते बाहर भी मोहताज बापा पिता हों जानो नाही तेरी कवन जुगता बंधन मुक्त संत ही मेरा मेरी राखै ममता पई कृपाल ठाकुर रहे वावन जाना गुरमिल नानक पाल ब्रह्म पछाणा श्री राग महला पंजवां घर पहला संत जना मिल भाईया कटियाड़ा जमकाल सच्चा साहिब मन उठा हुआ खसम दयाल पूरा सतगुर भेटिया बिनसिया सब जंजाल मेरे सतगुरा हों तुद विटो कुरबान तेरे दर्शन को बलहारणै तुस दिता अमृत नाम राऊ जिन तू सेव्या भाव कर सही पुरख सुजान तिना पिछय छुट्टी है जिन अंदर नाम निधान गुरु जी बुड़दाता को नहीं जिन दिता आत्मराम आई से प्रवान है जिन गुर मिलया सुभाई सचे से तीरथ आ दरगा बैसन जाई करते हथ बड़ियाईया पूर्व लिखिया पाए सच करता सच करणहार सच साहेब सच टेक सचो सच बखाणी है सचो बुद्ध बवेक सर्व निरंतर रब रहे आ जप नानक जीवा एक श्री राग महला पंजवां गुर परमेश्वर पूजी है मन तन लाई प्यारू सतगुर दाता जी का सब सहदे आधारू सतगुर बचन कमावणी सचाई विचारू बिन साधु संगत रतिया माया मोह सब चार मेरे साजन हर हर नाम संभाल साधु संगत मन वसै पूरन होवै काल रहाऊ गुर समरथ अपार गुर वडभागी दर्शन होए गुर अगोचर निर्मला गुर जीवड़ वरना कोए गुर करता गुर करण हार गुर मुख सची सोए गुर ते बाहर किस नहीं गुर कीता लोड़े सोए गुर तीर्थ गुर पार जात गुर मनसा पूर्ण हार गुरदाता हर नाम भी उभरे सब संसार गुर समरथ गुर निरंकार गुर पू ऊचा अगम अपार गुर की महिमा अगम है क्या कति कथन हार जितड़े फल मन वांछी है तितड़े सतगुर पास पूर्व लिखे पावन।

जुगो जुग अटल दसां पातशाहियां दी जोत नाम अमृत दे भंडार तन तन साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे हजूर सुशोभित हो रहे गुरु प्यारे गुरु सवारे सत्संगी जनों आओ अद प्यार अंदर करो नमस्कार गुरुदेव अद सहित ते प्यार भर के बुलाओ फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

सतगुरु प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्याव हैं सब त्याव हैं तुद जी हर सच्चे सृजनहारा।

कट कट के पट पट की जाने जब उद करक करा कर तारा प्रजा तरत तब दे अपारा जब या करख कर

जी कहते पूरे गुरु की कृपा के बिना, पूरे गुरु के ज्ञान तो बिना परमेश्वर खुश नहीं होता, परमेश्वर की खुशी नहीं मिलती। बाणी के वचन आता है, उद्यम करहे अनेक हर नाम ना गावही। रब नू मिलने वास्ते बड़े उद्यम करता है, कर्मकांड करी जाता है, पर नाम नू जपदा नहीं। भरम है जोन असंख मर जन्म आव ही। पता नहीं किन्ने असंखा जन्मां दे विच भरम दा फिरदा, भटकदा फिरदा। पशु पंखी सैल तरवर गणत कछु ना आवे। कदे पशु बन गया, कदे पंछी बन गया, कदे कुछ बन गया, कदे कुछ बन गया। बीज बोवस भोग भोगै की आपना पावे। जिहो जिहा मनुख बीजदा है उन्हों ओह जे फल मिलता है। सुख सागर गुर छड़ कै भव जल अंदर भंबल पूसे। दुनिया के लोग सुखां दे समुंदर सतगुरु नूं छड़ के संसार दे दुखां दे विच्चों सुख लभदे फिरदे, देवी देवतियां दी पूजा करदे फिरदे, पर सच्चे गुरु नूं छड़ दिंदे। लहरी नाल पछाड़िया नहौमै अग्नि अंदर लुसे। चिंता दीआं लहरां दे विच डुब्बी जांदे ने, हौमै दे विच सड़ी जांदी है। जमदार बदे मारियन जमदूतां दे धक्के तूसे। धर्मराज की दरगाह दे विच बजे हुए जांदे है, मारी दे है, जमदूतां दे धक्के खांदे है, क्योंकि चंगा कर्म नहीं किया। गोयल वास्ता चार दिन नाओ तरायन ईसे मूसे। संसार ते चार दिन दा गोयल कहिए गुजरां दीआं छपरां वांगू वसदा है। बाणी दे विच वचन आउंदा गोयल आया गोयल। गोयल उन्हां नूं कहिंदे है जिहड़े लोक किसी दूसरे जगह तो आउंदे आ, पशु आवारा लैके खुले लैके तुरे फिरदे आ, पशुआं दे संगल नहीं पाउंदे। वो जिथे उन्हां नूं जगह मिलदी आ उत्थे डेरा मल के बह जाउंदे आ। इदां ही सारी उम्र टाइम पास करदे। उन्हां नूं कहिंदे आ गोयल। जिवें उह चार क दिन थोड़ा समां रह के फिर अगे चले जाउंदे आ, उत्थे छपरी पा लैंदे आ, फिर उत्थों उठ के होर किते चले जाउंदे आ। इदां ही भाई गुरदास जी कहिंदे दुनिया ते चार दिन का गुजारा है, चार दिन कट्टण वास्ते आया। कोई इत्थे अपने आप नूं ईसा मन्नी बैठा, कोई कहिंदा मैं मूसा नाम धरा के कि सदा ही रहना है, मौत नूं भुल गए। मूसे वर्गे वड्डे वड्डे चलाक लोग दुनिया ते आए, भुल गए मौत नूं। एक साखी यह सुनाई जाती है मूसे बारे कि बड़ा चलाक बंदा सी, इहनूं पता लग गया मेरी मौत होनी है। इन्हें आख्या भी मैं धर्मराज के जमदूतों नूं भुलेखा पा दूँ। इन्हें अपने वर्गियां कई मूर्तियां बना लिया, एक कमरे के लुक गया। जदों समा आया धर्मराज के जमदूत इन्हूं लैण आए, कहिंदे उन्होंने देखा भी इत्थे कई मूर्ते खड़े है, इन्हूं लैके जाइए। उन्होंने पता ही नहीं लग्या एडा भुलेखा पै गया। वो वापस गए धर्मराज नूं कहिंदे भी उत्थे लभदे नहीं, तो बहुत मूर्ते खड़े है। लिखिया साखी विच धर्मराज समझ गया भी चलाकी कर गया इन्हां दे नाल। फिर उन्होंने एक नुकता दस्या, कहिंदे जाओ उन्हां मूर्तियां कोले खड़ो, जाके किसे दी सिफत करो कि बहुत सोहनी मूर्ति बनी हुई है, आह भी सोहनी है, आह भी सोहनी है। एक अद्धी विच नुक्स कढ दिओ, जिहड़ा असली होएगा आपे ही बोल पेगा। उन्होंने इदां ही कीता, आ के उन्हां मूर्तियां कोले खड़ के कमाल दी मूर्ति बनाई है, शोभा करन लग पे। आह भी बहुत सुंदर है, आह भी बहुत सुंदर है, इहदी अखां बहुत सोहणियां ने, इहदे कन्न बहुत सोहणे, इहदा नक चेहरा बड़ा सोहणा है। एक दे कोले जा के कहिंदे आह मूर्ति ठीक नहीं बनी, इहदा नक थोड़ा टेढ़ा बणिआ। हुण बणे वी से इक्को जिहे सी, तो नक विच नुक्स कढ़िआ ते असली मूसा अंदरों बोल पिआ, कहिंदा हुए बणाया तां मैं ही ऐं, सारे नक इक्को जिहे, तुसीं पहलियां दी बड़ियाई करदे आउंदे हो, उन्हां वर्गी सेम मूर्ति यह है, इहदा नक केड्डा काटो कहने आ। उह कहिंदे नक दी सानूं लोड़ नहीं, तेरी लोड़ सी। फिर मूसा अपनी चलाकी नहीं चला सकिया,
ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਘਟ ਨਾ ਕੋਈ ਅਖਾਇੰਦਾ ਆਪੋ ਤਾਪੀ ਹੈ ਤਹੂਸੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਹਾਉਂਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਆ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਘਾਟ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਕਹਾਇਆ, ਸਭ ਕਹਿਤੇ ਹੈ ਪਾਇਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਪੁੱਛੋ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆਖਦੇ ਆ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ।

0: तेरे सोरे नू सामले रब सच्चा ना ही सच कुलैनी ना मैन वारी
1: तेरे सोरे नू सामले रब

सतगुरु ने उस मां तो सारी गल जेड़ी सुनी है। सच्चे पातशाह ये मां सी जेड़ी भंडारियां दी मां सी। तीन गोत इत्थे वसदे सी, चोणे ते टेरे ते भंडारी। सतगुरु कहन लगे मां चोणे चुने जाने, टेरे तिल जाने, भंडारिया के खजाने है जेड़े, ये सदा भरे ही रहने। महाराज ने उस मां वर दिता कि भाई मदाना मां तो हूं चली गई है, मां जेड़ी सतगुरु नू कह गई है, क्योंकि उसने सुन ली थी सारी गल उथे बार दे नाल ला के, ते सतगुरु नू आके उसने दस दिता। आपा व्याहां दीआं गल्लां करदे जी, ते मूला चोणा जेड़े महाराज दे सोहरा साहब सन, ओह कहिंदे सी जे तुसी, ओह कहिंदे सी, उन्होंने चिट्ठी लिख के कली सी वी तुसी एडी वड्डी बरात आ जेड़ी जन लियाउणी है, ते बड़े शानो शान चौकत नाल आउणा है, हाथियां ते घोड़िया ते बकियां दे उत्ते जन है जेड़ी आवे, तुसी बेदी परिवार हो, माया तुहाडे कोले बहुत है। उसने चिट्ठी लेके कली सी, मैं सुबह बेनती कीती सी, जिवें अज भी वड्डे वड्डे विआह जेड़े ओह हुंदे आ, ते जेड़े अमीर बंदे हुंदे आ ना अमीर, फिर ओह चोज आ जेड़े ओह करदे आ, गाउण वालियां नूं लियांदे आ। साडे भी महल्ले तो माड़ा जिहा दूर बहुत तकड़ा सरदार रहिंदा सी उत्थे, ओहदा मुंडा जिहड़ा बिलकुल तुतला जिहा, ते साडे नाल ओहदी साह सलाम सीगी। ते सानू इक दिन साडे घरे आया, कहण लग्या बाबा जी तुहानू ना जन दे नाल ले जाणा असीं, ते मैं जन कदों गई तरीक तरूक बची आ कोई, कहना वेखो एडा सिद्धा जिहा बंदा जावां, ते बहुत तकड़े घर दा ही ओहनूं साक होया। मैनू कहना मैं कदों कि तरीक बजी आ, कहना जी पता नहीं तो 35 भादरों है, ते पता नहीं 37 भादरों है। जेड़े अमीर के बचोज, पर धन गुरु नानक साहब महाराज पातशाह जिन्हां दे विआह दीआं तैयारियां जिहड़ियां लावां दे तैयारियां जिहड़ियां हो रही हैं, आपां धन गुरु नानक साहब महाराज पातशाह का इतिहास है जिहड़ा, क्योंकि ये हफ्ता है जिहड़ा सतगुरु दे प्रकाश दिहाड़ा जेड़ा मनाया जा रहा है। आपां भी ढाडियां दीआं वारां दे रूप विच ढाडी सिंघां पासों ये इतिहास है जेड़ा महाराज दे विआह दा सुन रहे हां। जिन्नियां भी संगतां आईआं हन, सारियां संगतां दे बहुत बहुत धन्नवादी हां। ये संगतां ने, सब माई भाई ने, बीबियां भैणां धीआं ने, वीरां ने, बच्चियां ने, ਸਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਵਜੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੇਟਾ ਮਾਇਆ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਖ ਬਖਸ਼ਣ, ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਫਲੀ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਸਭ ਮਾਈ ਭਾਈ, ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ ਜੀ।

परम सत्कार जो सतगुरां दे साजी और निवाजी होए गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत सर्व माई भाई रसना दी पवित्रता और मन दी पूर्ण एकाग्रता वास्ते सतगुरां दे बख्शिया होया नारा बुलंद करो। सतगुरां नूं शीस नवाओ, सारे गज वज के फतेह बुलाओ, सारे आखो जी वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी की फतेह। अपार रहमत होई समूह नगर निवासी मैता दीआं संगतां दा उपराला। इलाके दे सहयोग नाल चार दिन दा इह सतसंगत दा समागम जो सतगुरां ने बख्शिया है, काफी समय तो आप जी ने गुरमुखां प्यारियां तो आनंद माणे है। कोई गावै रागी नादी बेदी बहु भांत कर। हाँ जी, गाउण वाले बहुत ने, गीत सारे गुरु दे ही गा रहे ने। भाणा कोई रागी है, भाणा कोई ढाडी है, भाणा कोई कलीशर है, भाणा कोई कथा वाचक है। सो सत संगत गल गुरु दी हो रही है, ढंग भावें वखो वखरे ने। तो आप सर्व संगतां ने जो आनंद काफी समय तो माणिया है, तो आओ थोड़ा जा समा आपां महाराज चरणां विच हाजरी भरनी जैसी सतगुर बख्शिश कर दे है। एकाग्रता बना लो तां जो समय और स्वास्थां तो पूरा पूरा लाहा लिया जा सके। तो कल दा आनंद आप माण रहे सी, नाम दी गंगा सतगुरां ने बख्शिश कर दिती, रहमत कर दिती। ए नाम दी गंगा है, इत्थे बाणी दा प्रवाह चल रहा, जिहदे नाल मन साफ होना है। पानी नाल केवल तन साफ हुंदा है। तीर्थां ते जाण वाली अज दुनिया बहुत है। कोई आनंदपुर साहिब जा रहे है, कोई हरिमंदर साहिब जा रहे है, कोई दमदमा साहिब जा रहे है। तीर्थ यात्रा करन वाले यात्रु बहुत ने, पर सत संगत जी जे वास्तव विच वेख्या जावे, उत्थे केवल मेला वेखण वाले बहुते नजर आउंदे ने। ओ विरला है जेड़ा कहिंदा मैं दमदमा साहिब चलना किते बाजां वाले दे दर्शन हो जाए, मैं आनंदपुर साहिब चलना ओ किते कलगियां वाला मिल जावे। पर साडा हाल कैसा हो गया, सत संगत जी केवल ते केवल तन करके असी तीर्थां ते पहुंच जाने हैं, तन करके असी गुर अस्थाना ते गुरधामां ते पहुंच जाने हैं, पर मन करके नहीं पहुंचते। मन ते उत्थे भी खिंडा विच है, मन ते घरां विच ही फिरदा रहिंदा है, मन ते घरां विच रौड़दा रहिंदा है। तीर्थां ते जाके भी मन नूं शांति नहीं आउंदी, क्योंकि मन नूं शांति आउंदी क्यों नहीं, क्योंकि मन ते उत्थे पहुंचदे ही नहीं, मन ते घर ही रह जांदा है। पर जे मन करके असी तीर्थ ते पहुंच जावांगे, मन करके असी बाणी दे नाल मन दा इशनान करावांगे, तां मन साफ होना। उत्थे तीर्थां ते जाईदा है, पर सच जाणिओ, मना च झाटी मार के वेख लिओ, एक दूजे बारे ते आपां नूं नहीं पता वी आपणी सोचनी क्या है, अपनी विचारधारा क्या है। अलग अलग विचार हन आपो अपने, अपने मन बारे ते पता ही हुंदा है। मन विच विचार करके वेख लियो, दमदमा साहिब सारे गए होणगे, कोई विरला रह गया होना जेड़ा ना पहुंचिया होवे। आनंदपुर साहिब बहुत संगतां गईयां होणगियां, दर्शन कीते होणगे, पर कदी उत्थे जाके आ मंग भी करनी कीती है कि नहीं कीती, मन च झाती मारियो केड़ी मंग। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता, परमारन जाच सिखाई है। वो तीर्थां ते जाना माड़ा नहीं, उत्थे जाके जिथे दुध मंगना, जिथे पुत मंगना, जिथे जमीना मंगना, जिथे घर दे सुख मंगना, कदी आ भी मंग मंग लै। हम मैं

बेनती है सारे बोलिया करो धारणा दे साध संगत पैरां नाल चल के आए हैं पैर पवित्र होए हथां नाल सेवा करांगे हथ पवित्र हो जाने में नेत्रां नाल मार दे दर्शन करांगे ते साडियां अखां भी पवित्र हो जाणगियां ते जे कन्नां नाल बाणी सुणांगे कन्न भी साडे पवित्र हो जाणगे ते जे साध संगत रसना नाल बाणी पढ़ांगे रसना दे नाल धारणा विच बोलांगे शब्द विच बोलांगे ते साडी रसना भी पवित्र हो जाए सारे बोलो जरा लगाओ हाजरी बीबियां भैणां मातावां सारे गज गज के गूंजां पा दिओ इको ही गल बस पछताउणा पैणा समा आ जांदा ऐसा सब नूं पछताउणा पैंदा।

दर्शन कर्मा तो बिना नहीं, वो तो कर्म जागदे फिर ही सतगुरां दे दीदार हुंदे, फिर ही अमृत वेले उठिया जांदा, फिर ही गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी हजूरी च पहुंचिया जांदा, नहीं तो माड़े कर्म जिहड़े अगे आखण हुंदे। क्या लैणा गुरुद्वारे जाके, ऐसा ही कर्म है। चलो जो विचार है, दर्शन करने वास्ते गए, पहले दिन महाराज अंदर चले, दूजे दिन गए फिर अंदर चले, तीजे दिन गए महाराज शिकार खेडन चले। हुण इन्हां दे दिमाग विच आउंदी गल भी आप रब दुनिया ते आया है, दर्शन क्यों नहीं हो रहे। वो कहिंदे भी वह गुरसिख का बचन जापदा पूरा हो गया, बचन पूरा हो गया, सानू ते कहिंदे हुण दर्शन होने नहीं, इंज जापदा भी सानू बाजां वाले सतगुरां दे दर्शन नहीं होने, सानू महाराज दे दीदार नहीं होने। ते साध संगत हुण महाराज दे वापस जाण दा समा हो गया, महाराज ने आनंदपुर साहब जाना सी, दोवें पति पत्नी कहिंदे भी राह दे उत्ते खलो जांदे आ, जिहड़े राह तो महाराज लंघणगे उदों तां दर्शन हो ही जाणगे, जिहड़े राह लंघणगे उदों ते दीदार हो जाणगे। साध संगत हुण इह दोवें पति पत्नी जिहड़े राह तो महाराज ने लंघणा सी उह राह ते खलो गए, हुण महाराज दा आउण दा वेला हो गया। धन दे समेत पिता आउण वाले ने काफला दूरों नजर आया, चा चढ़ गया भी हुण ते दर्शन हो ही जाणगे, हुण ते दीदार हो जाणगे। ते साध संगत हुण जदों नेड़े आया काफला, सिंह ते नजर आउंदे ने पर कलगीधर पिता नजर नहीं दिसदे। हुण किधर गए महाराज, कलगीधर पिता किधर गए? साध संगत सिंह दिसदे ने, घोड़िया वाले गुरसिख सिंह बथेरे है पर हुण बाजां वाले

तू मैं तुझ ऊपर बहु मानिया जा तू अंदर ता सुखे तू निमाणी मानिया जे तू तुथा कृपा निदान ना दूजा वे खाल एहा पाई मूं दातड़ी नित हिरदै रखा संभाल।

काल कित्ती लाख करोड़ प्रिये रोम ना पूजन तेरिया तू साही हूं साह तू कह ना सका गुण तेरिया सहिया तऊ असंख मन्यो आप बदानिया एक पूरी नदर निहाल देह दर्श रंग मानिया जय दिठे मन धीरी है किले विक वंजन दूरे सो क्यों विसरै माओ मैं जो रहे आपर पूरे होए नमाणी तै पई मिलिया सहज सुपाए पूर्व लिखिया पाया नानक संत सहाय तू ही महला पंजवा सिमरत बेद पुराण पकारन पोथिया नाम बिना सब कूड़ गाली होशिया नाम निदान अपार भगता मन वसै जन्म मरण मोह दुख साधु संग नसै रहाउ मोहे बाद अहंकार सर पर रुनिया सुख ना पायन मूल नाम विशुनिया मेरी मेरी तार बंधन बंधिया नरक सुर्ग अवतार माया तंदिया सोदत सोदत सोद तत बिचारिया नाम बिना सुख नाही सर पर हारिया आवह जाही अनेक मर मर जन्मते बिन बूझे सब वाद जोनी भरमते जिनको भय दयाल तिन साधु संग भया अमृत हर का नाम तिनी जनी जप लया खोज है कोट असंख बहुत अनंत के

रात नानक चाऊ एह राग सूही महला पहला कुचजी एक ओंकार सतगुर प्रसाद मन कुचजी अम्मावन दोसड़े हऊ क्यों सहोरावन जाऊं जियो एक दू एक चढ़ंदिया कौन जाने मेरा नाऊ जियो जिन्नी सखी सहोरावया ते अंबी छावड़ी एह जियो ए गुण मानना आमनी हऊ कै जी दोस्त त्रेऊ जियो क्या गुण तेरे विथरा हऊ क्या क्या किन्ना तेरा नाऊ जियो एकत टोलना अंबड़ा

मंदर मिट्टी संदड़े पत्थर की तेरास जियो हों एनी टोली भुलियस तिस कंत ना बैठी पास जियो अंबर कुंजा कुरलियां बाग बेठे आए जियो सात अन चली सोहरे क्या मुंह देसी अग्गे जाए जियो सुती सुती चाल किया भुली वाटड़ी आस जियो तै सह नालो मुतियस दुखा को त्रियास जियो तुद गुण मैं सब अवगणा एक नानक की अरदास जियो सब राती सुहागनी मैं दुहागण का

कोई दस पदेसड़ा मेरा मन अंत ना काहू जाए दियो एहो मन तै कू देवसा मैं मार्ग देहो बताए दियो हो आया दूर हो चल कै मैं तकी तो सरनाए दियो मैं आशा रखी चित मह मेरा सबो दुख गवाए दियो इत मार्ग चले भाई अड़े गुर कह सो कार कमाए दियो त्यागे मन की मतड़ी।

मैं हर वर भावे तिसकी बलराम जियो रव रहिया जुग चार त्रिभवन बाणी जिसकी बलराम जियो त्रिभवन कंत रवै सुहागण अवगणवंती दूरे जैसी आसा तैसी मनसा पूर रहिया पर पूरे हर की नार सो सर्व सुहागण रान ना मैलै विस्ते नानक मैं वर साचा पावै जुग जुग प्रीतम तैसे बाबा लगन गनाए हम पी वन्या सोहरे बलराम जियो साहा हुक्मर जाए तो ना कले जो प्रभ करे बलराम जियो किरत पया करते कर पाया मेट ना सकै कोई जानी नाओ नरह ने केवल रव रहिया तेहो लोई माए नरासी रोए वछुनी बाली बाले हेते नानक साच शब्द सुख महली गुर चरणी प्रभ चेते बाबुल दितड़ी दूर ना आवे घर पेई बलराम जियो रहस्ती वेख हदूर फिर रावी घर सोही बलराम जियो साचे फिर लोड़ी प्रीतम जोड़ी मत पूरी प्रधानी संजोगी मेला थान सुहेला गुणवंती गुरु ज्ञानी सत संतोख सदा सच पल्ले सच बोले फिर भाई नानक विछड़ ना दुख पाए गुरमत अंक समाए राग सूही महला पहला शंत कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हम घर साजने आए साचे मेल मलाए सहज मलाए हर मन पाए पंच मिले सुख पाया साई वस्त प्राप्त होई जिस सेती मन लाया अन दिन मेल भया मन मानिया कर मंदर सोहाई पंच शब्द तुन अनहद वाजी

ठाहर नाम रतन परवानु पात मत पूरी पूरा परवाना ना आवे ना जाती नानक गुरमुख आप पछाने प्रभ जैसे अवनासी एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग सूही संत महला पहला कर चौथा जिन किया तिन देखिया जग तंदड़ै लाया दान तेरे घट चानना तन चंद दी पाया चंदो दे पाया दान हर कै दुख अंधेरा उठ गया गुण जन लाड़े नाल सोहै परख मोहनी लया विवाह हुआ शोभ सेती पंच शब्दी आया जिन किया तिन देखिया जग तंदड़ै लाया हौ बलिहारी साजना नीता वरीता एहो तन जिन स्यों गाडिया मन लियड़ा दीता लिया ता दिया मान जिन स्यों से सज्जन क्यों विसरह।

झूणे ना गुर शब्द सुनाया मन परदेसी जेती है सब देश पराया गुरमहली घर अपने सो भर पुर लीना सेवक सेवा तां करे सच शब्द पतीना शब्दे पतीज अंक पीजै सो महल महला अंतरे आप करता करे सोई प्रभ आप अंत नरंतरे गुर शब्द मेला ता सुहेला पा जंत अनहद बीना गुर महली घर अपने सो भर पुर लीना कीता क्या साला ही है कर वेखै सोई ता की कीमत ना पवै जे लोचै कोई कीमत सो पावै आप जनावै आप अभुल ना भुले जय जयकार करह तुद भाव है गुर कै शब्द अमुल।

मत साई राग सूही संत महला तीजा घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुख सोहिलड़ा हर त्यावहु गुरमुख हर फल पावहु गुरमुख फल पावहु।

सवारी हर प्रभ कृपा करे हर जापो हो सुख फल हर जन पाव हो नानक कह सुनो जन भाई सुख सोह लड़ा हर त्याव हो सुन हर गुण पीने सहज सुपाई गुरमत सहजे नाम त्याई जिनको तुर लिखिया तिन गुर मिलिया तिन जन्म मरण पौ भागा अंदरों दुरमत दूजी खोई सो जन हर लिव लागा जिनको कृपा कीनी मेरा स्वामी तेने अन दिन हर गुण गाए सुन मन पीने सहज सुपाई युग मह राम नाम निस्तारा गुरते उपजै शब्द विचारा गुर शब्द विचारा।

हर गुण गाए सदा तृप्तासी, फिर भूख ना लागे आए। बह दिस पूज होए हर जन की, जो हर हर नाम त्याए। नानक हर आपे जोड़ वछोड़े,

राग सूही महला तीजा घर तीजा भगत जना की हर जियो राखै जुग जुग रखदा आया राम सो भगत जो गुरमुख होवै हमें शब्द जलाया राम हमें शब्द जलाया मेरे हर पाया जिस दी साची बाणी सच्ची भगत करह दिन राती गुरमुख आख वखाणी भगतां की चाल सच्ची अत निर्मल नाम सच्चा मन पाया नानक भगत सोहै दर साचै जिन्नी सचो सच कमाया हर भगतां की जात पत है।

शब्द सच्चे सच सोहिला, जिते सच्चे का हुए विचारो राम। हम सब किल विख काटे, सच रखिया उर तारे राम। सच रखिया उर तारे दुत्तर तारे, फिर भवजल तरन ना होई। सच्चा सतगुर सच्ची वाणी, जिन सच बखालिया सोई। साचे गुण गावे सच समावे, सच वेखे सब सोई। नानक साचा साहिब साची नाई, सच निस्तारा हुई। साचे सतगुर साच बुझाया, पात राखे सच सोई राम। सच्चा भोजन भाओ सच्चा है, सच्चे नाम सुख होई राम। साचे नाम सुख होई मरे ना कोई, गर्भ ना जूनी वासा। ज्योति ज्योत मलाई सच समाई, सच नाई परगासा। जिन्नी सच जाता से सच्चे होए, अन दिन सच त्याएन। नानक सच नाम जिन हिरदै वसिया, ना विछड़ दुख पाएन। सच्ची बाणी सच्चे गुण गावे, चित कर सुहला होई राम। निर्मल गुण साचे तन मन साचा, विच साचा पुरख प्रभ सोई राम। सब सच वरतै सचो बोले, जो सच करै सो होई। जह देख तह सच पसरिया, अवर ना दूजा कोई। सच्चे उपजै सच समावै, मर जन्मै दूजा होई। नानक सब किसे आपे करता, आप करावै सोई। सच्चे भगत सोह दरबारी,

एक होई, साच रते भगत एक रंगी, दूजा रंग ना कोई। नानक जिसको मस्तक लिखिया, तिस सच प्राप्त होई। तू ही महला तीजा, जुग चारे तन जे भवै, बिन सतगुर सुहाग न होई राम। निश्चल राज सदा हर केरा, तिस बिन अवर ना कोई राम। तिस बिन अवर ना कोई, सदा सच सोई। गुरमुख एको जानिया, धन पिर मेलावा हुआ। गुरमति मन मानिया, सतगुर मिलिया तां हर पाया। बिन हर नावै मुक्त ना होई, नानक कामण कंतै रावे। मन मानिया सुख होई, सतगुर सेव धन बालड़िए। हर वार पाव है सोई राम, सदा हुवे है सुहागणी। फिर मैला वेस ना होई राम, फिर मैला वेस ना होई। गुरमुख बूझै कोई, हो मैं मार पछाणिया। करनी कार कमावै, शब्द समावै, अंतर एको जानिया। गुरमुख प्रभ रावे दिन राती अपना, साची सुभा हुई। नानक कामन फिर रावे अपना, रव रहे आ प्रभ सोई। गुर की कार करे धन बालड़िए,

सच समाए सच वरत है सब थाई सच्चा श्रृंगार करे दिन राती कामन सच समाए हर सुख दाता शब्द पछाता कामन लया कंठ लाए नानक महली।

गौंड राग बड़ा ही मधुर, आकर्षक और प्रभावशाली राग है। भारतीय संगीत में इसकी गणना अलग प्रचलित रागों में की जाती है। पुरातन कीर्तनकार इस राग में बिलावल के अंग नाल गाते सन, जिस करके होर भी मधुर बन जाता है। इस राग में बाणी गाने वाले की आत्मा पूर्ण उत्साह में रहेगी। केवल एक भी आस रखनी, इस चेतावनी में बार बार मन चुकता है, क्योंकि ये आस परमित्री भाव दीजा है। छूना झूठ दिन सब जाए, इस राग में सारे स्वर शुद्ध लगते हैं। श्री हरिमंदर साहब जी की मर्यादा अनुसार दिन के दूजे पहर गाया जाता है। पहला शब्द मत को धर्म भूल है संसार, राग गाउण विच गा रहे हैं डॉक्टर जगीर सिंह जी। दूजे शब्द का कीर्तन कर रहे हैं भाई अमरजीत सिंह जी। तान शब्द पहली तुक मेरे मन प्रेम लगो हर चीज, श्रवण करो पहला शब्द मत को धर्म भूल है।

नवा दायम रूप देके नवा वड्डा पसारा पाके आत्मिक छंद प्राप्त करन दा हथियार बनाया। इस राग दे नादात्मक स्वरूप विच दो गंधार, दो निषाद अते बाकी सारे शुद्ध सुर लगदे हैं। जैजावंती विच कोमल गंधार दी वरतों एक विशेष ढंग नाल उसके दोनों पासे ऋषभ सुर रख के कीती जांदी है। इसका वादू सा ऋषभ अते समाधि पंचम है ते गौण दा समा राग दा दूजा पहर मनिया है। सरवण करो रे मन कौन गत होए है तेरी भाई कमलपाल सिंह पासों। दूजे शब्द गान कर रहे हैं डॉक्टर दर्शन सिंह जी नरूला। शब्द बोल हम राम सिमर यह है तेरा काज है। पहला शब्द रे मन कौन गत होए है तेरी

मुन मन प्रणाम गुण गण मदान नर भर गंज हर नर पर पंज गण गण प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड भर नर मंड।

नमो जय चरण नाम अंत जगात अजिन बात अंत जगात अनरंज बात आण टोट भंडार अंठट पार अड़ीठ धर्म अदीठ धर्म अंत दाता महंत हर मूल मना शंत प्रसाद करणालय है हर कालय है कल खंडन है मह मंडन है जगदीश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व वारण है द्रत के करण है जग के करण है मन मान्या है जग जान्या है सर्वं पर है सर्वं कर है सर्व पास है सर्वनाश।

वृक्षा मेरी तुम करो से कुबार या सक संगरो दोषी देव वजुद पाता सकल मलेश करूरण गाता जी अस्तोषम सरणी परे धन के दोष दुखता वह मरे।

0: तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुझा खेला करोड़ सच्चे सब तान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सिरत सच्ची साला सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ते आयन सच जो मर जमे तो कच नी कच महला पहला
1: बड़ी बड़ाई जा वडा लाओ बड़ी बड़ाई जा सतन्याओ बड़ी बड़ाई जाने तो खाओ बड़ी बड़ाई जाने आलाओ बड़ी बड़ाई बुझे सब पाओ बड़ी बड़ाई जा पुछ

कौड़ी नदृत रहे जे अपनी इच्छा नदृत सतगुरु पाया। इहो जियो बहुते जन्म प्रमया सतगुरु शब्द सुनाया। सतगुरु जे वरदाता को नहीं सब सुनियो लोक सुभाया। सतगुरु ने सच

पौड़ी से किसी संतोख जिन सचो सत्य आया उन्हीं मंदा पैर न रखियो कर सुकृत धर्म समाया उन्हीं दुनिया तोड़े बंधना पानी थोड़ा खाया तू बस सी।

पौड़ी कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना हुक्म की अमल पाव दे रा तीड़े अगे जावना नंगा दुज चले आ ताजी सैखरा डरावना करो गण।

पौड़ी स्टाइल सबको वेख नदी हेठ चलाएगा आपे देवड़े आपे ही कर्म कराएगा ढोड़ावड़ में जी सिर सिर कंधे लाएगा सदरूपति जे करे सुल्ताना कहो कराएगा।

और जिसके पाई सो साहिब संभाली है जित किता पाई अपना सा काल ब्री क्यों खाली है मंदा मूल न की जे लमी नजर निभाली है जो साहिब ना हारी है तेरे हाथ पासा ढाली है।

चक्र लगे चक्री के चले खुशले पाए हुरमत कृष्ण अगली ओ हो वचो के दुना खाए हसने करे द्रा ही फिर गए सुंदर पाए वो जुगो आए अगला मोहन पाड़ा खाए जिसका दिता खावड़ा इस सही ऐसा बात नाल हुकुम न चले नाल खस

मनहार स्वामी सगल कटाके अंतर जामी अपने गात में ते जानह आपे आपन संग आपे प्रभराते तुमरी ओसते तुम ते होए नानक अवर ना जान सकोए सर्व धर्म मह श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जाप निर्मल कर्म सगल क्रिया मह उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया सगल उद्यम मह उद्यम भला हर का नाम जपहो जीव सदा सगल बानी मह अमृत बानी हर को जास सोने रसन बखान।

जिह प्रसाद बसह सुख मंदिर तसह त्याय सदा मन अंदर जिह प्रसाद गृह संग सुख बसना आठ पहर सिमरहु ते सरसना जिह प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याय ते हमन जोग जिह प्रसाद पाठ पटंबर हडावह तसह त्याग कत अवर लुभावह जिह प्रसाद सुख सेज सोई जय मन आठ पहर ताका जस गावी जय जिह प्रसाद तुझ सब को मन मुख ताको जस रसन बखान जिह प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्या

सुख सहजे बसना जिह प्रसाद हस्त कर चल है जिह प्रसाद संपूर्ण फल है जिह प्रसाद परम गत पावहे जिह प्रसाद सुख सहज समाव है ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागहो।

साध सांग अमृत गुण गायन साधक संग सर्वथान गम नानक साधक संग सफल जनम साधक संग नहीं कछ कहाल दर्शन भेटत होत निहाल साधक संग कलूखत हरै साधक संग नरक पर हरै साधक संग इहा उहा सुहेला साध संग बिछरत हर मेला जो इच्छा सोई फल पावै साधक संग ना बिरथा जावै पार ब्रह्म साध रिद बसै नानक उदर।

नानक रचना प्रभृति बहुविध अनेक प्रकार अष्टपदी कई कोटे हुए पूजारी कई कोटे आचार व्यवहारी कई कोटे पह तीर्थवासी कई कोटे बन प्रमह उदासी कई कोट भेद के स्रोते कई कोट तपिस्तर होते कई कोट आत्म ध्यान तार है कई कोट कब काब विचार है कई कोट नवतन नाम त्याव है नानक करते का अंत ना पावे कई कोट पहे अभिमानी कई कोट अंध अज्ञानी कई कोट कृपन कठोर कई कोट अभिग आत्म निकोर कई कोट पर दर्प को हिर है कई कोट पर दुख ना करे।

भगत भगत सुनियत हो लोए, जाकर हृदय एको होए। सच करणी सचता की रहत, सच हृदय सतमुख कहत। साची दृष्टि साचा आकार, सच वर्तय साचा पासार। पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सोजन सच समाता। श्लोक रूप न रेख न रंग केश, त्रिहु गुण ते प्रभु पिहन। तिसह बुझहै नानका, जिस होवै सो प्रसन्न। अष्टपदी अविनाशी प्रभ मन मह राख, मानस की तू प्रीत त्याग। तिस्ते पर नाही किश कोए, सर्व निरंतर एको सोए। आपे बीना आपे दाना, गहर गंभीर गहीर सुजाना। पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद।

पेख करहे करंग नाना भेद कीनो विस्तार प्रभ अविनाशी एकंकार नाना चलत करे खिन माहे पूर रहे पूर्ण सब ठाए नाना विद कर बनत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब कर तिसके सब तिसके ठाओ जाप जाप जीवै नानक हर नाओ नाम के तहरे सगले जंत नाम के तहरे खंड ब्रह्मांड नाम के तहरे सिमर

आप साते साते सबत हरि आपे गुण आपे गुणकारी शब्द साते साते प्रभ भक्ता सुरत साते साते जस सुनता बुजन हर को साते सब होए नानक साते साते प्रभ सोए साते स्वरूप हृदय जिन मान्या करन कराम तिन मूल पछान्या जाकर दै विश्वास प्रभ आया तत ज्ञान तिस मन प्रगटाया पहै ते निरभउ होए बसाना जिस ते उपजत समाहे समाना बस तुम्हारे

बोलह जस जिह बाद नराते प्रभ अपने जन कीनी दाते करह भगते आत्म कह चाए प्रभ अपने सो रहे समाए जो होवा होवत सो जान प्रभ अपने का हुक्म पछान तिसकी महिमा कौन बखानाओ तिसका गुण कह एक ना जानाओ आठ पहर प्रभ बसह हजूरे कहो नानक सेई जन पूरे मन मेरे तिन की ओट लेहे मन तन अपना तिन जन देहे जिन जाने अपना प्रभु पिछाता।

कारण सुप्रभ सम्राथ दृढ़ कर गहो नाम हरिवाथो यो तम संचह हो वह पगवंत संतजना का निर्मल मंत एक आस रख मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन का चार कुंट उठता वह सो तहन हर सेवा ते पावहे जिस सुख का नित बाचह मीत सो सुख साधु संग प्रीत जिस शोभा को करह भली करनी सा शोभा भज हर की सरनी अनको पावी रोग ना जाए रोग मिटे हर अवखद लाए सर्व निदान मह हर नाम निदान जप नानक दरगह प्रवान मन प्रबुद्ध हो हर कह नाए दह दिस तहवत आवै ठाए ताको बिघन ना लागे कोए जाकर दह बस हर सोए काल ताती ठांडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ पहो बिनस पूरन होए आस भगत पह आत्म प्रगास तित कहरे जाए बस अविनाशी कहो नानक काटी जम फासी तत विचार कह जन साचा जन्म मरे सो काचो काचा आवागमन मिटै प्रभ सेव आप त्याग सरन गुरदेव इउं रतन जन्म का होए उधार हर हर सिमर प्राण आधार अनेको पावना छूट नहारे सिमृत शास्त्र वेद विचारे हर की भगत करह मन लाए मन वंशत नानक फल पाए संग न चाल से तेरा तना तू क्या लपटा वह मूर्ख मना सोत मीत कुटंब अरबनता इनते कहो तुम कमन सनाथा राज रंग माया विस्तार इनते कहो कमन छुटकार आस हस्ती रस असवारी झूठा डंफ झूठ पासारी जिन दिए तिस बुझे ना बेगाना नाम विसार नानक पछताना गुर की माते तू लेह आने भगत बिना बहु डूबे स्याने हर की भगत करहो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत चरण कमल राखह मन माहे जन्म जन्म के किर बिख जाहे आप जपह अवरा नाम जपावहो सुनत कहत रहत गत पावहो सार भूत सत हर को नाओ सहज सुभाए नानक गुण गाओ गुण गावत तेरी उतर समैल बिनस जाय हो मैं बिख फैल हुए अचंत बसै सुख नाल सास ग्रास हर नाम समाल चाड़ स्यानप सगली मना सार संग पावह सच तना हर पूं

जब अकार इहो काशनां दृश्यता पाप पुन तब कहते होता। जब तहरि अपन सुन समाधे तब बैर विरोध किस संग कमाते। जब इसका वर्ण चिह्न न जापत तब हर्ष सोग कहो किस है व्यापत। जब अपन आप पार ब्रह्म तब मोह कहा किस होवत परम। अपन खेल आप वर्तीजा नानक करना हार ना दूजा। जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किस कौ गनी। जब एक है हर अगम अपार तब नरक स्वर्ग कहो कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए तब शिव सकत कहो कित ठाए। जब आप है आप अपनी ज्योत तरह तब कवन निडर कवन कत डरे। अपन चरित आप करना हार नानक ठाकुर अगम अपार। अविनाशी सुख अपन आसन तह जन्म मरण कहो कहा विनाशन। जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए। जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पुष्ट लेखा। जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे। अपन आप ही अचर जा नानक आपन रूप आप ही उपर जा। जह निर्मल पुरख पुरख पाते होता तह

सुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार कियो बखियान। आपन खेल आप कर देख खेल संकोच तो नानक एक है। जह अवगत भगत तह आप जह पसर पासार संत प्रताप दुहु पाख का आप है तनी उनकी शोभा उन्हु बनी। आप है कौतक कर अनद चोज आप है रस भोगन निर्जोग जिस पहावै तिस आपन नाये लावै जिस पहावै तिस खेल खिलावै। बेसुमार अथाह अगंत

का देता, नानक सगल सृष्ट का जेता। जीव जंतर सबता कै हाथ, दीन दयाल अनाथ को नाथ। जिस राखै तिस कोय न मारे, सो मुआ जिस मनह बिसारै। तिस तज अवर कहा को जाए, सब सिर एक निरंजन राय। जीव की जुगते जाकै सब हाथ, अंतर बाहर जानह साथ। गुण निधान।

सगल सुमिग्री एक सौ घट माहे अनकरंग नाना दृष्टाहे नौ निध अमृत प्रभ का नाम देही महेश का विश्राम सुन समाद अनहत तहनाद कहन न जाई अचरज विस्माद तिन देख्या जस आप देखाए नानक तिस जन सो जी पाए सो अंतर सो बाहर अनंत कहट कहट व्याप रहया भगवंत।

विनती करहो सार संग अग्न सागर तरहो हर तन के परले हो पंडहर नानक गुरपूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक निवार उधार हो जियो गुण गोबिंद अमृत रस पियो चित चितवह नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जियो का यह आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाल एह रतन सुनत कमावत होत उधार आप तरह लोक निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाह दवाजय सोने सोने आनंद करे प्रभ गाजय प्रगटे गोपाल महांत कै माथे नानक उदरे तिन कै साथे सरन जो

केवो दी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो, तुसी ए प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ए प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सभा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हाँ कि इस प्रोग्राम नूं होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसी सानूं सुझाव दिंदे रहोगे।

तन दारा संपत सगल जिन अपनी कर मान इनमें कच संगी नहीं नानक साची जान। पत तु उदारन पैहरन हर अनाथ के नाथ कौना।

0: केवोदी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो, तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ये प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सभा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हाँ कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाने लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे।
1: साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तो आप जी नु पता ही है, जे नहीं तो वह भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3374 अति फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3375।
2: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
3: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.

ने इस देश वास्ते खून बहाया है, भारत जाना भारत वर्षी आजाद कराया है, भारत जाना भारत वर्षी आजाद कराया।

परम सम्मान योग गुरु रूप गुरु खालसा जी सतगुरां दी बख्शी होई फतेह करिए प्रवान। कोई भी रचना वांझी ना रहे, इको बार कहण दे उत्ते दिओ प्यार दा सबूत आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तांता दे योग ने गुरु दीआं सिख संगतां जड़िया सतगुरु महाराज के पावन पवित्र दरबार की हाजरी भर के अपना जीवन धनता के योग बना रही ने, अपने जिंदगी के कीमती स्वासा सफला कर रही ने। और मेरे तो पहला सत्कारयोग भाई साहब आप गुरु के सिख

एक होते सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसिया गुरु के जन्म मरण दुख जाए सतनाम

मन से सदन सभ कर समझो, मन ही माहे उदास। रे मन ऐसो कर सन्यासा, मन से सदन सब है कर समझो, मन ही माहे उदासा रहाऊ।

0: हर अमृत सदित संदान गुरु सतगुरु गुरु सतगुरु तन तन मन जारा बन गुरु
1: एहन कहरे मोहन भगवता तुम जाकर गुरु।

बन से सदन सब कर समझो, बन से सदन सब कर समझो, बन से सदन मन ही मोहे उदास, मन ही मोहे उदास।

مانو اس سنیاسی نے اس سنسار نو جنگل سمجھیا، اینو تماشا سمجھیا، اینو گایا، رب دی پریت وچ رہے دن رات۔ پھر اگے اس سنیاسی دے گن دسدے نے جیڑا باہروں سنسار وچ رہندا ہے تے اندر دی تصویر کیڑی آتم تت نو پرسن، کیونکہ سارا شبد آتم تت نو پرسن دی کریا ہے، بھی او کیویں ہو سکدا ہے؟ उदे विच महाराज कहिंदे जत की जटा। जत शब्द का अर्थ है संजम मर्यादा। नाल नाल आपां इह भी विचारना इस बाणी दे विच जिहड़े भरम भुलेखे पाए गए ने दसम पातशाह की बाणी बारे, बई ये बाणी नहीं है। ये सारे शब्द आपां गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी नाल मेल के पढ़ने ने। ये सारे शब्द गुरु ग्रंथ साहिब नाल रिलेटड ने, संबंधित ने। जे इन्हां शब्दां नूं कोई खंडन करदा है وہ پاوے سانو کہی جانا میں گرو گرنتھ صاحب نو ماننا جی، میں ہور کسے گرنتھ نو نہیں مانتا۔ وہ پوڑی لا کے گرو گرنتھ صاحب نو کھنڈن کر رہا طریقے نال، بھئی آج جے میں دسم نو کھنڈن کر دیا گا کل نو میرے کو پروف مل جان گے گرو گرنتھ صاحب نو کھنڈن کرن دا۔ یہ طریقہ جے دھیان رکھیا کر، انہاں سیدھا نہیں تو انو کہنا، کیونکہ سکھ دے من وچ چھاپ ہے گرو گرنتھ صاحب جی، اودے واسطے مر مٹن لئی تیار ہے۔ ہاں اس اموشنل دے اس وچار دے اولے وچ کہ ہور گرنتھ دا میں کھنڈن کرنا، میں دسم گرنتھ دا کھنڈن کرنا، انہیں اس اوٹ دے وچ پانچ سات سال پہلا دسم تے لانے نے، تے پھر اوہی فارمولے گرو گرنتھ صاحب وچ ورتے جانے۔ اس لیے سچیت ہون دی لوڑ ہے، آپ صرف وہ شبد لبنے نے، بھی شبد ملتے ہیں گرو گرنتھ صاحب دے وچ۔ جت جت پہارا سویرے تسی پڑھے، دھیرج سنیار اہرن مت وید ہتھیار، پاؤ کلا اگن تپتاؤ پانڈا پاؤ، امرت تتال کڑیا سبد سچی ٹکسال، جن کو نظر کرم چنکار نانک نظری نظر نحال۔ اے جت دا ارتھ ہے مریادا، جت دا ارتھ گرست دا تیاگ نہیں ہے۔ جت کی جٹا، जीवन नू मर्यादा विच लियाओ, यही जटा हैं। जोग को मजन, ते जोग शब्द तो भी कईयां नू नफरत है। गुरु ग्रंथ साहिब विच पढ़ो, राज लीला तेरा नाम बनाई जोग बनया, तेरा कीर्तन गाई जोगदार से जुड़ना। जोगदार जरूरी नहीं भी जोगी बन गया, जोगदार से जोड़ पाना, सांझ पाउणी। जोग को मजन, इशनान कर परमात्मा दे नाल जुड़न दा, नेम के नखुन बढ़ाओ, ते नखुन दा अर्थ है नौ। जोगी नौ रखते सन, कहिंदे इहदे नालों किन्ना चंगा होवे तू नेम। नेम दा मतलब हुंदा एक शब्द वरत्या जांदा साडे विच नित नेम, क्योंकि नित नेम तो बिना कदी मनुख कामयाब नहीं हो सकता। ये तो साडे बहाने ने जी, असीं खुले रहना जी, गिनतियां मिनतियां विच नहीं पैना जी। ये तो असीं बचन दा साधन बनाने हां गुरमत। नेम का मतलब की है? नेम का मतलब है जो कुछ तेनू गुरु ने हुक्म किया वो बाणी पढ़नी ही पढ़नी है। तेरी समझ आवे ना आवे, तेरा जी करे ना करे, तेरे तो उठाया जाता नहीं उठाया जाता, इहदे नाल कोई समझौता नहीं। तू नेम कर लिया, हुण तेनू करना पैणा। इस करके नेम तो बिना सिखी नहीं। नेम के नखन बढ़ाओ, ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो। गुरु की सिख्या, गुरु का ज्ञान, गुरु की बाणी का उपदेश, एदा उपदेश अपनी आत्मा नू कर, अपनी जमीर नू कर। नाम विभूत लगाओ, विभूत का अर्थ है सुबह। नाम की सुबह अपने शरीर से मल, यानी कि तेरे शरीर का कोई भी अंग परमात्मा की याद तो खाली नहीं होना चाहिए। फिर कहिंदे अल्प आहार सुलप सी निद्रा, दया छिमा तन प्रीत। अल्प आहार, आहार का मतलब है खुराक, अल्प का मतलब है थोड़ा। लोड़ वास्ते छकिया कर जे तू सिमरन करना। अल्प आहार सुलप सी निंद्रा, ते लोड़ वास्ते निंद्रा लिया कर। इन्हां दो चीजां का
साडे शरीर ते बहुत प्रभाव पैंदा खाने पीने दा ते नींद दा। जिन्ना मनुख खाएगा ज्यादा उन्ना समेगा ज्यादा, ते जिन्ना समेगा ज्यादा उन्ना वासना दे कंट्रोल विच ज्यादा होगा। इहदे नाल जुड़िया होया रसना दे नाल वासना जुड़ी हुई। इस करके सौना ते खाना कंट्रोल विच, दया छिमा तन प्रीत, सारे संसार दे जीवां ते दया करनी, ते हर एक नूं यतन करना, बड़ी जल्दी माफ कर देना, क्रोध तो बचना, ये अपने शरीर से बिरती धारण करनी। सील संतोख सदा निर्वाहो, सील का मतलब है किसी की गल नू सहारना, सहन कर लेना। संतोख जीवन विच जो कुछ वाहगुरु ने दिता है ओदे ते संतोख कर लेना, ओदे उत्ते मन नू टिका लेना। ये सारे गुण ने उस अकाल पुरख दे घर वल जाण वाले निर्वैभव इस तरह गुजारा करे। हवैभो त्रै गुण अतीत, त्रै गुण रजो तमो ते सतो, इन्हां तों अतीत लंघिया होया है। रजो दूजियां नू अपने थले रखण की कोशिश करनी, तमो खाण पीण दे रसां विच भिजे रहना, ते सतो धार्मिक कर्मां दा हंकार करना। इन्हां तों वी जिहड़ा लंघ जाए काम क्रोध हंकार लोभ हठ, मोह ना मन स्यों लियावै। ये साडे उत्ते पड़दे पए होए ने, काम की बहुतात, गुस्सा ते अहंकार ते लोभ दियां तरंगां अंदरों, ज्यादा लैण की अंदर बिरती ते मोह, इन्हां नूं त्यागे। पर नाल महाराज ने एक वचन कह दिता, हठ ना करी, क्योंकि हो सकता है असीं धक्के नाल इन्हां दा दमन करांगे, हो सकता है अंदर हठ पैदा हो जाए। ते जिथे हठ पैदा होया, हठ ही हंकार दा बीज है, उहदे विचों हंकार उग पैंदा। हठ मोह ना मन स्यों लियावे, हठ नहीं करना, अरदास करनी है, गुरु दे सहारे ते तुरना है। ये चीजां जदों निवृत कर लैंदा है, तब ही आत्म तत् को दर्शे। आत्म तत् एक आत्म तत् एक परमात्मा। आत्म का अर्थ है साडा जदों अपना आप शुद्ध हो गया, साडे अंदर अख खुलनी शुरू होगी, जिदे नाल परमात्मा नूं वेखे। उन्हूं ब्रह्म कहिंदे ने, परमात्मा नूं पार ब्रह्म कहिंदे ने। जिन्ना चिर असीं ब्रह्म तक नहीं जांदे, पार ब्रह्म तक नहीं जा सकते। ब्रह्म का मतलब है साडा अपना आप। जिन्ना चिर साडा अपना आप आ उपर वालियां सारियां गल्लां तों खलास नहीं हुंदा, छुटदा नहीं, आ जिवें काम क्रोध लोभ हठ मोह ना मन स्यों लियावै, तिन्नां गुणां तों पार नहीं जांदा, उत्ते वाले गुण नहीं धारण करदा, उन्ना चिर साडा ब्रह्म नहीं खुलदा अंदर। ब्रह्म दृष्टि जिन्हों कहा जा, दिव्य दृष्टि क्या है। जदों ब्रह्म दृष्टि नहीं खुलती, साढ़े को अख ही नहीं, तो दर्शन की गल कि करा, दर्शन होएगा किसों? वो तो कलिया विचार ने ना, वो तो साढ़े मनोकल्पित दर्शन ने। असि अपने विचार मंडल के मन के दर्शन बनाए जाने, भी आ मैं दर्शन कर लिया जी, आ दर्शन हो गया। इतने बारे दर्शन, इतने सहारे ने। जे परमात्मा दे दीदार करने ने, ते महाराज कहिंदे दर्शन तो पहला अख लभ लै, वो अख आ नहीं, आ दोवां अखां नाल नहीं उन्हें नजर आ, वो अख है तेरा अपना आप। ते ज्यों ज्यों गुरु के शब्द की कमाई दे नाल, गुरु के हुक्म ते तुरन दे नाल, तेरा अपना आप जदों अंदरों मैल रहत हो जाएगा, अंदरों पापा की मैल अंदरों शुद्ध हो जाएगा, तेरा अपना आप, उस अपने आपे दे विच्चों ही एक नजर खुलनी है, जिन्हें चौवां पासों दे दीदार कर लेने ने। उन्हों महाराज कहिंदे तब ही आत्म तत् को दर्शे। सब तो पहला उस अख नूं वेख लैंदा है जिदे नाल परमात्मा नूं वेख सकदा है। परम पुरख कह पावे, ते वो परम पुरख परमात्मा अकाल पुरख वाहगुरु उहदे दीदार कर लैंदा है। ये उस महान संत सिपाही तपस्वी सतगुरु धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने अकाल पुरख वाहगुरु दे राह ते तुरन वास्ते जिथे उन्होंने शस्त्र की गल की है, उथे शब्द की गल की है, और इस सनेरी रात के अंदर भी जदों सरसा नदी का किनारा आया, उथे भी
ਸਵੇਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦਾ 21 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਨ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਜਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਏ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ, ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਲੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਫੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

0: जगदी नजरों नी में मार्ग तुरके
1: ओ गोर मकर सता तक के अंबर हो फल बरसाऊंगे सी
0: ओ तेती करोड़ देवते नगमे पढ़ते गुरके
1: ओ आया रोकने कारा

0: जनता लुटते अंधविश्वासी पड़दा पाके
1: ओ रख दे माया पर रख दे तार शिकार दी
0: ओ बगले वंगू कोमल बैर समाधि लाके
1: ओ लगी वैच समा दे तौले ठग बनारसी
0: अकरन तारू जगते मूरे जदून तारी
1: ओ दुनिया बारे जिसनू सूद्र का